सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो वसारी है भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम वाहिगुरु जी।

आई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छय करता। श्री अस तुज जप है दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न सभ आपत कोई अड़िल।

दोहरा कालपुर की देह मोह कोटक बिशन महेश कोटिंदर ब्रह्मा किते राक्षस क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत ने तो सुर्ग बास अकबर कराऊ सगरी पुरी समेत चौपाई।

दशमेंगु बिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदाओं कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन कौ बंदना

करणालय है, अर्कालय है, कल खंडन है, महमंडन है, जगतीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व वारण है, त्रित की धारण है, जाकी कारण है, मन माने है, जग जान है, सर्वंकार है, सर्वंकार है, सर्वपास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगतीश्वर है, ब्रह्मंडस है, कल खंडस है, पारती पर है, करुणा कर है, जप जप है, थप थप है, कृता कृत है, अमृता अमृता है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी त्रेता है, अमतीश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता अमृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, निर्नायक है, कलकायक है, विश्वंभर है, करुणालय है, निर्नायक है, सर्वपायक है, पावभंजन है, अर्गंज

चंद्रे नमो राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादन पे भूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशा से नमो भंक बंके अपंगी अनामे अपंगी स्वरूपे अरंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अन

ऐसा सतगुरु जी मिलाई तिस नूं सरसों पिया विचों हुआ पुजाए। जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसई मन आई।

सोरे हर रस हर बिन कछु न लागई भगतन कौ मीठा। जैसरी दी वार दी पौड़ी आप जी हरि वाहिगुरु दे नाम तो बिना होर कुछ भी भगतां नूं मिठा नहीं लगता है। आन स्वाद सब फीके आ कर निर्णव डीठा और जिन्ने स्वाद ने सब फिके पै जांदे ने निर्णा करके प्रैक्टिकल करके वेख लिया उन्होंने रब दे प्यारिया ने मिठा नाम रस ऐसो रे हर रस मीठा। ऐसा वाहिगुरु का नाम रस मिठा गुरमुख किना विरला डीठ किसे गुरमुख गुरमुख बन के गुरु दे सनमुख आ के गुरु दे हुक्म नू कमा के पहला सुनिया फिर मन्या कमाई कीती निश्चा कीता भरोसा कीता फिर कमाई कीती जी ने ओही गुरमुख है। सुनिया मन्या मन कीता भाव अंतरगत तीर्थ मल नाओ किसे विरले गुरमुख ने वेख्या नहीं तां इंद्रियां दे रस विच ही जाउंदे ने। सब संसार जेड़ा है बाहरी रस ने शरीर दे अंदर हिरदे विच नाम रस है खोजना पैंदा उहदे वास्ते कमाई करनी पैंदी जुबान तों हिरदे विच पहुंचदा है रस। जिहड़े गुरमुख अभ्यासी कमाई करदे ने सारी दुनिया जिहड़ी है ओह बाहरले इंद्रियां दे रसां कसां दे विच ही लग जांदी शरीर दे इंद्रियां दे रसां विच ही लग के रह जांदे जन्म सारा लंघ जांदा है। ताई कह रहे ने गुरमुख किना विरला डीठा इंद्रियां दे रसां कसां नूं लंघना पैंदा है इह रस छाडे ओह रस आवा ताई कह सी ओह रस पीआ इह रस नहीं भावा रारा रस निरस कर जाने होए निरस सो रस पहचाने यह रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया रस नहीं भाए भावा। भगत कबीर साहब रारे अखर द्वारा रस का ही निर्णा किया विरले गुरमुख जड़े लंघ जाते हैं बारी इंद्रिया के रसा हिरदे की खोज करते ने जुबान रसना बन जाती फिर हिरदे तक जदों मन ते जुबान एक हो जाते ने जपद उदों रस आउंदा है। गुरमुख किना विरला डीठ बारी रस विकारां दे रस फिके पै जाते ने त्याग देंदे ने गुरमुख किना विरला डीठ किसे विरले गुरमुख ने वेख्या हन भव कीता है रहाओ। धन गुरु अर्जन देव साहब भगत भी ताई संत भगत हर नाम आराधा वाहिगुरु दी नाम दी आराधना ताई रस आउंदा है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज कृपा करन विचार करदे आ होईयां भुल्लां चुक्कां दी माफी बख्श अगे तो सुमत बख्शनी जी।

रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मन वंशा जाकी शरण सतगुर गुर सेवा लख गत जाकी।

प्रभाताय करह स्नान, स्नान करह प्रभात शुद्ध मन। गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन, होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग। जग जीवन जगनाथ जल तल में रहया, पूर्व बहुविध वर्णन सतगुर गुर सेवे।

जगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब उपर मन बच क्रम सेविया सचा।

अकथ कथा कथि न जाय तीन लोक रया समाय सत सिद्ध रूप धरयो साहन कह साहे जियो।

रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रकट दिन आगर गैर गंभीरता अत बड़ सुपर सदा सब विदरत नागर। संत मराल करै कंतु वल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कलयुग दुरत दुरत दूर कर वे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर।

सुख संपत्ति रिदियार सिदना छोड़ा सत दान वड्डो अतवंत महाबल सेवक दास कहो तत ताहे का परवाह कहू की जाके बसी स्तरियो गुरात तीन भवन भरपूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई।

जग मैं हर परम पद पायो, तै हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज धारी,

तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद तत्ते मत चूकै रे, मन भेद विभेद न जान पियो। परता छिरदै गुर अर्जुन कै, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।

बसा संत जसरदा दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन आवरण कोई मन बच जिन

भानु मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रत्यक्ष हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण वाची है वेद ब्रह्मा मुख गावै।

परमानंद सतगुर सेव ने अपना गुर शब्द विचार सतगुर का भाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार एथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द संजाप दे तित सच्चा दरबार सच्चा सौदा खर्च सच

ज्ञान रतन मन वसै सब देख्या ब्रह्म सुभाए नानक गुरमुख बोहत है वडभागी चढ़ै ते पाव जल पार लंघाए बिन सतगुरु दाता को।

माया मोह पर जाल और मंदर वासा नेक है नवनिध नाम समाल धन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दार भाल बड़ भागे गढ़।

पाए मन्ना पथ स्यो प्रगट जाए मन्ना मग्न चला पंथ मन्ना धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाना मन को।

मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भक्त न होए स्वस्थ बाणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन

दातार बंद खलासी पाना होए होर आख न सकै कोए जे को खाए आखण पाए ओहो जाण जेतिया मोहे खाए आपे जाण आपे दे आख है से पे के जिस नौ बख्से सिफत सालाह नानक पाते साही पाते साहु मुल गुण मुल व्यापार मुल व्यापारिये मुल भंडार मुल आवह मुल ल जाहे मुल पाए मुला समाहे